हवा की तरह जीवन भी लगातार आगे बढ़ता रहता है, वहीं कहीं रुकता नहीं। इसलिए हमें भी मुश्किलों के सामने रुकना नहीं चाहिए। रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल नहीं, बस कदम चलते रहने चाहिए।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 52 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹിയിലെ.
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले.
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा.
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया. आप भी लगवा लो.
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए. उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई. उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम

0: बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश पे बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के

0: कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
1: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
0: केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्णाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं।

0: समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर एक से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कैलकटा हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इश्यूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD प्रेडिक्ट्स हेवी रेनफॉल इन उड़ीसा एंड गंगेटिक वेस्ट बंगाल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Baluchistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both houses of parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The session, which began on the 20th of last month, will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both houses of parliament are also scheduled to take up private members' business today. The Calcutta High Court has cancelled OBC All certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. We have more details on this from our correspondent.
4: The Calcutta High Court has cancelled OBC certificates issued under the OBCA and OBCB classifications introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. A divisional bench of Justice Rajashekhar Mantha and Justice Anuj Singh said the two classifications no longer exist in the state and certificates issued under the earlier system have lost their validity. Holders of these certificates will now be treated as belonging to the general category. The controversy dates back to 2010 when the state divided OBC communities into OBCA and OBCB categories. In 2024, the High Court had struck down the inclusion of 66 communities in the OBC list and ordered a fresh survey. After the BJP government came to power in 2026, it abolished the OBCA and OBCB classification and introduced a single OBC category. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: The Punjab and Haryana High Court has stayed the appointment process for the posts of 454 pharmacy officers over allegations of a paper leak in the recruitment, the examination for which was held on July 19 this year. The posts were advertised by Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot. The next hearing of the case has been scheduled on September 17. Our correspondent brings us the details.
5: The stay orders of Punjab and Haryana High Court have come amid a political storm over the examination. Within few hours of the alleged paper leak through high-tech pen cameras and other instruments, Punjab police claimed to have busted an interstate cheating racket after its crackdown across 25 examination centers in Faridkot, Kotkapura and Ferozpur. The police arrested 7 key conspirators then and 28 candidates who were directly involved in this case. The probe revealed that the cheating racket charged desperate candidates exorbitant sums ranging between 3.5 lakh rupees and 13 lakh rupees to guarantee passing marks. Nearly 7,000 candidates had appeared for the post. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
3: BJP spokesperson Sambit Patra has alleged that the Punjab government misled the public over the alleged paper leak in the pharmacy officers' recruitment examination conducted by Baba Farid University of Health Sciences in July. Talking to reporters, he said that the Punjab and Haryana High Court has stayed the examination and made stern observations, including questioning why the exam was not stopped earlier and whether it should be conducted afresh.
6: The government of Punjab was trying to mislead the public and serving lies, although the paper was leaked. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann repeatedly stated in front of the TV that no paper was leaked in the pharmacy exam, and this was merely a matter of irregularities. When the court took cognizance of this entire matter, the truth came out before the public and the student who were working hard day and night.
3: The protest by candidates over alleged irregularities in the 14th JPSC examination in Jharkhand is continuing. The demand for transparency in the exam process and the lathi charge on students has now moved from the streets of Ranchi all the way to the Parliament complex in Delhi. Here's a report on this from our correspondent.
7: The candidates are fully mobilized, demanding an impartial investigation into the alleged discrepancies

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
1: आकाशवाणी സമയം 12:20. ഇപ്പോൾ ലളിത ഗാനങ്ങൾ. ഗായിക ഗ്രീഷ്മ ഹർഷൻ. സംഗീതം കൊല്ലം ജയചന്ദ്രൻ. കടവത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് എന്നാരംഭിക്കുന്നു രചന മധു ചെങ്ങന്നൂർ.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन एक दर्पण की तरह है, आप मुस्कुराएंगे तो जीवन भी मुस्कुराएगा, इसलिए हर परिस्थिति में आशा, प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखें।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें, विचार भेजते रहें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे।
2: जी
3: आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, ईशांत देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन और तनुजाबाई देवांगन।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व सप्ताह में सभी श्रोताओं का ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कुछ कम चर्चित चेहरों के साथ साथ चर्चित चेहरों की भी।
3: इस क्रम में आज हम बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर जी के जीवन और उनके योगदान पर। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गाँव में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लेखक, कवि, समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें सामान्यतः वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है।
2: अब जानते हैं उनके बचपन के बारे में। बाल्यकाल से ही उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन दिनों भारत अंग्रेजों का गुलाम था। बहुत से युवा देश आजादी के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे।
3: सावरकर जी ने भी लंदन में भारतीय युवाओं को संगठित किया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का प्रयास किया।
2: सावरकर जी ने इंग्लैंड में रहते हुए अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन को मजबूत किया और युवाओं का आह्वान किया कि देश की आजादी के लिए वे एकजुट हों और संघर्ष करें। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली।
3: श्रोताओं, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए सन 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था।
2: जेल में उन्हें अत्यंत कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। उनसे तेल का कूल्हू चलवाया जाता था, नारियल कुटवाए जाते थे और कठिन श्रम कराया जाता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन और अध्ययन का कार्य नहीं छोड़ा।
3: सावरकर जी एक उत्कृष्ट लेखक और कवि थे। उन्होंने इतिहास, समाज, राजनीति और राष्ट्रवाद पर अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में राष्ट्रप्रेम, आत्मबल और संगठन पर विशेष बल मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाया, लेकिन सामाजिक सुधारों पर भी उनका बहुत अधिक जोर रहा।
2: सावरकर ने जाति भेद और छुआछूत का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज तभी मजबूत होगा जब सभी लोग समान सम्मान के साथ रहें। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता पर बहुत बल दिया।
3: श्रोता, उनके विचारों का भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके समर्थक उन्हें प्रखर राष्ट्रवादी और दूरदर्शी विचारक मानते थे। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने इसे आत्मार्पण कहा और स्वेच्छा से भोजन और दवाओं का त्याग कर दिया।
2: वीर सावरकर भारतीय इतिहास के उन व्यक्तित्वों में से हैं जिनके जीवन में क्रांतिकारी संघर्ष, साहित्य, सामाजिक सुधार और राजनीतिक चिंतन का अनोखा संगम दिखाई देता है।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। और आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
3: हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर आप अपना उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, एक्स, लिंक्डइन और फेसबुक पर भी आप CIT NCERT को

0: फॉलो करके शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। वेबसाइट में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए।
0: और यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, निर्देशों का पालन कीजिए, अपना विकल्प दीजिए और पाठ्य पुस्तकों को सुनिए। आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, तो आइए अब सुनते हैं आज के खास शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सप्ताह में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रस्तुति विशेष रूप से आजादी पर ही केंद्रित रहेगी।
0: जी,
1: तो इस क्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
0: ये कार्यक्रम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन, उनके शौर्य, चिंतन और बलिदान के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और युवाओं तथा बच्चों को प्रेरित करता है कि वे पूर्ण समर्पण से देश की सेवा करें और आजादी के मूल्य को पहचानें।
2: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
3: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
2: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
4: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
5: कौन है?
6: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहां आंगन में बैठी क्या कर रही है?
5: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहां चले गए थे तुम?
6: तीर्थ करने चला गया था, अमृतसर।
5: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
6: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
5: ये इस शीशी में क्या है?
6: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
5: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
6: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
5: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
6: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे

0: जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
1: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
2: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
3: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
2: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
1: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भगत सिंह।
5: आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

बच्चों, सन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन उससे भी दो साल पहले यानी सन 1855 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक भीषण युद्ध हुआ था। ये युद्ध संथाल परगना और बीरभूम के आदिवासियों ने लड़ा था। अंग्रेजों के अत्याचारों से विवश होकर इन लोगों ने मारो या मरो का संकल्प लिया और अंग्रेजों से स्वतंत्र होने की

0: ठान ली।
1: बहुत हो गया, अंग्रेजों के अत्याचार बहुत सह लिए।
2: हाँ बाबा, हम तो जैसे आदमी ही नहीं।
1: ये अंग्रेज हमें कायर और कमजोर समझते हैं, लेकिन अब हम...
3: हाँ बाबा बताओ, हमें क्या करना होगा?
1: आजादी। हाँ, अब हमें स्वतंत्र होना है।
2: मगर बाबा, ये अंग्रेज लोग, इनके पास तो बहुत बड़ी फौज है, बड़े खतरनाक हथियार है इनके पास।
1: हमारे पास हथियार भले ही ना हो, मगर उन्हें कुचल डालने का हौसला तो है, अरे हिम्मत तो है। बस इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। हाँ, आजादी के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है मेरे बच्चों।
2: हाँ बाबा, हम ये कीमत जरूर चुकाएंगे। हम ये अत्याचार नहीं
3: सहेंगे। हाँ,
0: इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ। संथाल आदिवासियों के पास हथियारों के नाम पर धनुष था और बाण थे, मगर इनका निशाना अचूक था। संथाल आदिवासी तो सदा से ही घने जंगलों में रहते थे, परंतु ब्रिटिश सेना का इन जंगलों में युद्ध करने का ये पहला अनुभव था, इसलिए अंग्रेजों को लड़ने में कठिनाई आ रही थी।
4: My God, इतने घने जंगलों में इन आदिवासियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ना बहुत ही कठिन काम है।
5: यस सर,
4: हमें कोई और तरीका सोचना होगा।
5: सर, क्यों ना हम कुछ हाथियों को शराब पिलाकर इनकी बस्तियों में छोड़ दें?
4: गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है।
5: थैंक यू सर।
4: हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। नशे में पागल हाथी इन आदिवासियों को कुचल डालेंगे।
5: यस सर, हाथियों के सामने उनकी तीरंदाजी धरी रह जाएगी सर।
4: सिपाही।
5: यस सर।
4: हाथियों को शराब पिलाओ और फिर उन्हें इन आदिवासियों के घरों की तरफ दौड़ा दो।
5: यस सर।
3: Bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago, bago,

0: अंग्रेजों की इस योजना ने आदिवासियों की कमर तोड़ दी, मगर नहीं टूटा तो उनका हौसला और भी मजबूत हो गया। भारत को आजाद कराने का उनका एक ही सपना उनकी आंखों में बस गया था। मुट्ठी भर मासूम आदिवासियों ने बस जैसे देश के लिए न्योछावर होने की ठान ही ली थी। आदिवासियों की टोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौज एक गांव में जा पहुंची।
1: अरे जागो, अरे जागो, अरे जागो, अरे अरे दुश्मन आ गया, दुश्मन, दुश्मन।
2: हम तैयार हैं बाबा।
1: अरे दुश्मन हमें पकड़ने आया।
2: अरे दुश्मन हमें नहीं पकड़ सकेगा।
1: अरे चलो चलो अपने अपने घरों में आड़ लेकर दुश्मन की छाती पर तीर चलाना शुरू करो।
2: चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
0: गांव वालों ने आओ देखा ना ताओ सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। सिपाहियों ने गोलियों की भयानक बरसात कर दी। कई आदिवासी न्योछावर हो गए। मगर उस गांव में एक घर ऐसा था जहां से तीरों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
3: सिपाहियों, इस घर को चारों तरफ से घेर लो और पूरे जोर से हमला करो।
4: यस सर।
0: जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने उस घर के बाहर से आवाज लगाकर कहा,
3: सभी आदिवासी जो इस घर में छुपे हुए हैं वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। जान बचाने का ये आखिरी मौका है।
0: वीरों ने कब डरना सीखा, वीरों ने कब सीखा झुक जाना। वीरों का संकल्प यही था, देश के हित में मर मिट जाना। किसी कवि की इन पंक्तियों में जो भाव है वही भाव था आदिवासियों के संकल्प में। उन्होंने हथियार नहीं छोड़े, तीर चलते रहे, गोलियां चलती रहीं। अंत में धीरे धीरे तीर कम होने लगे, फिर कुछ देर बाद तीर चलने बंद हो गए। सिपाही घर के अंदर घुस गए। अंदर सब तरफ लाशें थीं। बस एक वृद्ध आदिवासी अंतिम सांसें ले रहा था। ये वही आदिवासी था जो अंत तक तीर चलाता रहा था। अंग्रेज कप्तान उस वृद्ध की ओर लपका और चीखा,
3: अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो।
1: हवाले कर दे।
3: yes.
0: वृद्ध ने अपना खंजर निकाला और कप्तान की गर्दन पर दे मारा। कप्तान के मरते ही वृद्ध पर गोलियों की बौछार हुई। वो वृद्ध शहीद हो गया। संथाल आदिवासियों का युद्ध समाप्त हो गया। इस लड़ाई में 25,000 लोग शहीद हुए। आखिर जिस आदमी ने आखिरी तीर चलाया उसका नाम क्या था, इस बारे में इतिहास चुप है। लेकिन इतिहास इतना चुप भी नहीं कि वो ये भी ना बता सके कि वो अनाम आदिवासी शूर वीर था। शूरवीर।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम शूरवीर, और आइए अब सुनते हैं प्रेरणा और देशभक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ ये गीत सारे जहां से अच्छा।
5: प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित इस गीत ने भारत की आजादी के आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था। आज भी ये गीत इतना ही प्रेरणादायी और ऊर्जावान है। इस गीत में भारत भूमि की प्रशंसा की गई है।

0: ലോകബാബു കാ ജന്മ കബ് ഹുവ?
1: ടീക് ഹേ, ഇസ്ക ഉത്തർ റിജോ ബതാവോ.
2: ലോകബാബു കാ ജന്മ 10 ജൂൺ 1954 കോ ഹുവ.
1: ടീക് ഹേ, ഓർ ഏക് പ്രശ്ന പൂച്ചോ റിജോ.
2: ലോകബാബു കാ ജന്മ കഹാം ഹുവ?
1: ഇസ് പ്രശ്ന കാ ഉത്തർ റിമാ ബതാവോ.
0: ലോകബാബു കാ ജന്മ ഛത്തീസ്ഗഢ് മേം ഹുവ.
1: ടീക് ഹേ, ലോകബാബു കാ ജന്മ ഛത്തീസ്ഗഢ് രാജ്യ മേ ഹുവ.
2: ജി ഏക് ശംഗാ ഹേ.
1: ക്യാ ഹേ ശംഗാ, പൂച്ച് ലോ.
2: आपने कहा छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ एक राज्य है क्या?
1: उत्तम रिजो, तुमने अच्छा प्रश्न किया. देखो, हमारे देश का नाम या राष्ट्र का नाम भारत है. केरल भारत का एक राज्य है. समझा लिया?
2: समझ लिया जी.
1: स्टेट के लिए हिंदी में राज्य कहते हैं और नेशन के लिए राष्ट्र कहते हैं. हिंदी में राज्य शब्द स्टेट के लिए प्रयुक्त है.
0: यहाँ एक नया शब्द दिया है, संवेदनशील. इस शब्द का अर्थ क्या है जी?
1: संवेदनशील शब्द का अर्थ है वेरी सेंसिटिव, वैगारिक माया. समझा?
0: समझ लिया जी.
1: रिजो, खंड का पुनर्वाचन करो.
2: लोगबाबू जन्म 10 जून 1954. लोगबाबू का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ. छत्तीसगढ़ अंचल के लोक जीवन की संवेदनशील प्रस्तुति उनकी कहानियों की विशेषता है. टीले पर चांद, बोधिसत्व भी नहीं आए, जंगल गाधा, बस्तर बस्तर आदि उनकी रचनाएं हैं.
1: ठीक है, परीक्षा के प्रश्न पत्र में इस प्रकार का खंड दिया जाएगा और उससे कुछ प्रश्न भी पूछा जाएगा. अधिकाधिक आउटसाइड पासेज अभटित गद्यांश दिया जाएगा. इसलिए इस प्रकार के खंड पढ़कर प्रश्न और उत्तर तैयार करने का अभ्यास करना चाहिए.
2: ठीक है जी.
1: तो अब हम कहानी की ओर ध्यान दें.
2: हाँ जी.
1: पृष्ठ संख्या 36, 36 ले लो.
2: ले लिया जी.
1: कहानी व्हाइट कैप, लोग बाबू. हिंदी कहानी है लेकिन उसका शीर्षक तो अंग्रेजी शब्द है, व्हाइट कैप. कहानी में व्हाइट कैप शब्द बार बार आता है. ये शब्द तुमको बार बार पढ़ना और लिखना पड़ेगा, इसलिए इसकी वर्तनी में, स्पेलिंग में पूरा ध्यान रखना.
2: हाँ जी, ध्यान रखे.
1: पाठ भाग में एक चित्र दिया है. चित्र में क्या क्या दिखते हैं?
2: एक मैदान है, मैदान का चित्र है.
1: अच्छा, मैदान में कुछ लटके हैं, है ना रिमा?
0: हाँ जी.
1: ठीक है, मैदान में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं?
2: क्रिकेट.
1: ठीक है, और क्या दिखता है रिमा?
0: मैदान के पास एक मकान है, निर्माण रहे हैं.
1: ठीक है रिमा. रिजो, और क्या दिखता है?
2: मकान के छत पर एक छोटा लड़का खड़ा है.
1: ठीक है रिजो, मकान के छत पर, रूफ पर एक छोटा लड़का खड़ा है. मैदान में खड़े लड़के उसकी ओर देख रहे हैं. वही छोटा लड़का हमारी कहानी का नायक है. उसका नाम है केशव. अब पाठ भाग पर ध्यान दें. पाठ का पहला खंड एक बार पढ़ सुनाऊं, ध्यान से सुनना.
2: ठीक है जी.
1: कहानी व्हाइट कैप, लोग बाबू. नई बसाहटों के कारण हर साल शहर की शक्ल बदल जाती थी. निर्माणाधीन इमारतों में काम करने वाले मजदूरों का गांव इतनी दूर था कि वे रोज वहां लौट नहीं सकते थे. ऐसे मजदूर निर्माणाधीन इमारतों के आसपास ही किसी कोने में अपनियां गडरियां रखकर चूल्हा सुलगाकर भोजन बनाते, खाते और रात गुजारते रहते. रिजो, ये खंड पढ़ो.
2: हाँ जी. कहानी व्हाइट कैप, लोग बाबू. नई बसाहटों के कारण हर साल शहर की शक्ल बदल जाती थी. निर्माणाधीन इमारतों में काम करने वाले मजदूरों का गांव इतनी दूर था कि वे रोज वहां लौट नहीं सकते थे. ऐसे मजदूर निर्माणाधीन इमारतों के आसपास ही किसी कोने में अपनी गठरियां लेकर चूल्हा सुलगाकर भोजन बनाते, खाते और रात गुजारते रहते.
1: अच्छा हुआ है रिजो, इस खंड में कोई अपरिचित शब्द है तो पूछ लो.
0: बसाहटों के कारण, बसाहट क्या है जी?
1: बसाहट का अर्थ है वासस्थान, तामस स्थलम. फिर
2: शक्ल क्या है जी?
1: शक्ल शब्द का अर्थ है रूप.
0: निर्माणाधीन,
1: निर्माणाधीन मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माण तिल इरिकुना. देखो बच्चो, प्रतिदिन, डेली, प्रतिवर्ष, एवरी ईयर हमारे शहर का रूप बदल जाता है.

0: यहाँ बड़े बड़े बसाहटों का वासस्थानों का निर्माण होता है, शहरों में बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण होता है, इसलिए शहर की शक्ल बदल जाती है, शहर का रूप बदल जाता है। प्रतिदिन जनसंख्या की बढ़ती जा रही है, बढ़ती आबादी को पॉपुलेशन को रहने के लिए मकान चाहिए। यह मात्र नहीं, हमारी सामाजिक व्यवस्था भी बदल गई है। पहले हमारे जमाने में एक घर में 10 या 15 आदमी एक साथ रहते थे, तब संयुक्त परिवार व्यवस्था थी।
1: संयुक्त परिवार क्या है जी?
0: संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, कूटकुटुंबम। एक ही घर में माँ बाप, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, पोता पोती सब एक ही घर में मिलकर रहते थे। नई पीढ़ी संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते, वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब हमारे समाज में एकल परिवार व्यवस्था है, न्यूक्लियर फैमिली व्यवस्था है। एक घर में माता पिता, एक या दो बच्चे बस, उनके लिए अलग अलग मकान चाहिए। समाज की आवश्यकता के अनुसार फ्लैटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बहुमंजिले फ्लैटों के कारण, निर्माण के कारण शहर का रूप बदल जाता है। समझा?
1: समझ गया जी।
0: देखो, इन इमारतों के निर्माण करने वाले मजदूर हमारे देश के, हमारे प्रदेश के या हमारे राज्य के नहीं है, वे दूर दूर गांवों से, राज्यों से आने वाले हैं। हमारे केरल में मजदूरी करने के लिए बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से मजदूर आते हैं। उन्हें हम आदर के साथ किस नाम से पुकारते हैं? रिजो
1: आदिति तोड़ी
0: दिख गए। इन्हें प्रवासी मजदूर भी कहते हैं। ये मजदूर रोज अपने घर लौट नहीं सकते, इसलिए वे निर्माणाधीन इमारतों के आसपास किसी कोने में रहते हैं। उनके पास अपनी गठरिया होती है।
2: गठरिया क्या है जी?
0: गठरिया शब्द का अर्थ है भांडम। इन मजदूरों के पास केवल 2-4 कपड़े और कुछ बर्तन होते हैं। उन्हें वे एक बड़े कपड़े में बांध कर अपने पास रखते हैं। यही उनकी गठरिया है। जहाँ वे रहते वहीं वे अपनी गठरिया रखते हैं, वहीं वे खाना बनाकर खाते हैं और सोते हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं क्या क्या है रिजो?
1: प्रवासी मजदूर दूर दूर गांवों से शहरों में काम पर आते हैं। वे रोज अपना गांव लौट नहीं सकते। उनको निर्माणाधीन इमारतों के आसपास अस्थायी डेरे में रहना पड़ता है। वहीं वे अपनी गठरियां रखते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं और रात सोते हैं।
0: ठीक है।
1: चूल्हा सुलगा कर ऐसा एक शब्द आया है, वह क्या है जी?
0: चूल्हा शब्द का अर्थ है अड़प, जो मिट्टी से बना हुआ है। चूल्हा सुलगा कर माने अड़प कत्तिच। घंट का पुनर्वाचन करो रिमा।
2: कहानी व्हाइट कैप लोग बाबू। नई बसाहटों के कारण हर साल शहर की शक्ल बदल जाती थी। निर्माणाधीन इमारतों में काम करने वाले मजदूरों का गांव इतनी दूर था कि वे रोज वहां लौट नहीं सकते थे। ऐसे मजदूर निर्माणाधीन इमारतों के आसपास ही किसी कोने में अपनी गठरियां रखकर चूल्हा सुलगा कर भोजन बनाते, खाते और रात गुजरते रहे।
0: इस खंड से अधिकांश प्रश्न और उत्तर तैयार करके प्रस्तुत करना। तो एक प्रश्न बनाकर पूछो रिजो।
1: हर साल शहरों की शक्ल बदल जाती थी, क्यों? नई बसाहटों के कारण हर साल शहर की शक्ल बदल जाती थी।
0: और एक प्रश्न रिमा पूछो।
2: इमारतों में काम करने वाले मजदूर ओस अपना गांव लौट नहीं सकते थे, क्यों?
0: उत्तर भी रिमा बताओ।
2: ठीक है जी। निर्माणाधीन इमारतों में काम करने वाले मजदूरों के गांव बहुत दूर था, इसलिए वे रोज लौट नहीं सकते थे।
0: ठीक है, ठीक है। तो इस खंड से मैं और कुछ प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ। हमारे गांव में या हमारे शहरों में काम करने आने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं?
1: प्रवासी मजदूर।
0: प्रवासी मजदूर कहते हैं। इनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। उन्हें जीने के लिए और रहने के लिए आवश्यक मकान नहीं होते। वे निर्माणाधीन मकानों के आसपास

0: टम्बररी शेड बनाकर या अस्थाई डेरे बनाकर रहते हैं, और वही उनका किचन है, वही उनका बेडरूम है, वही वे सोते भी हैं, खाते भी हैं, खाना बनाते भी हैं, सब कुछ वही करते हैं। कितनी कठिनाई से हमारे प्रवासी मजदूर अपना जीवन बिताते हैं। तो हमारी इस पाठ का विषय है प्रवासी मजदूरों की विषमताएं, कठिनाइयां। यही हमारे पाठ का भी मुख्य विषय है। आज का क्लास यहां समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापक थे डॉक्टर डी राजेंद्र बाबू, छात्र थे रिजो और रिमा। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।

0: ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ ഇനി രാത്രി 10:30 കേൾക്കാം. ഇനി 8:45 സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित. सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया. जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया. छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी. झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका. और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन. अब समाचार विस्तार से. संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया. पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए. इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है. संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया. इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है. हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ. सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है. नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी.
4: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है. अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं. तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
2: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
5: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है. ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई. लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है. और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं. क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है.
2: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं.
6: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है. अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र

0: हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
2: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
3: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
4: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात

0: 9 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम

बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena.
1: Namaskar. Market Mantra कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अब आइए सुनते हैं पहले मुख्य समाचार.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a mixed note. Sensex gains over 100 points, Nifty settles below 24,400. Parliament passes a Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to create a uniform and balanced fiscal framework for the minerals sector. And global crude oil prices fall.
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा. सेंसेक्स ने 100 अंकों की बढ़त दर्ज की. निफ्टी 24,400 के नीचे बंद हुआ. संसद ने खनिज क्षेत्र के लिए एक समान और संतुलित वित्तीय ढांचा बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम गिरे. और आज की खबरों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: और चलते हैं आज की पहली खबर की ओर. घरेलू शेयर बाजार आज मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 78,080 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 40 अंक यानी 0.16% गिरकर 24,396 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.1% से अधिक की बढ़त हुई और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.3% बढ़ा. दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स सुस्त रहा. हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन एडजस्टमेंट के बाद इसने अपनी गिरावट की भरपाई की और बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी ने भी उतार चढ़ाव को बढ़ाया. इसके विपरीत भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निफ्टी पूरे सत्र के दौरान नकारात्मक दायरे में रहा.
0: We'd also like to remind our listeners on a disclaimer before we move on to the headline stories. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And let's continue with the detailed stock story. In the Sensex pack, 19 out of the 30 companies registered gains. The benchmark domestic equity indices end on a mixed note today. Sensex registered a gain of 114 points to close at 78,080. Nifty declined 40 points or 0.16% to settle at 24,396. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index gained over 0.1% and the small-cap 100 index rose 0.3%. Sensex traded on a subdued note during the intraday trade. However, it erased its losses and closed higher following the closing auction session adjustment. The weekly expiry of the futures and options contracts of Sensex also added to the volatility. Conversely, Nifty remained in the negative zone throughout the session amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंडिगो 2.8%, एनटीपीसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 2% और लार्सन एंड टूब्रो में 1.9% से अधिक की वृद्धि हुई. वहीं दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक में 1.3% की गिरावट आई. टाइटन 1% गिरा और रिलायंस में 0.8% की गिरावट आई.
0: एंड इन द सेक्टोरल इंडस्ट्रीज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 17 आउट ऑफ द 28 सेक्टर्स एंडेड इन द पॉजिटिव जोन. अमंग द टॉप गेनर्स टेलीकॉम एज वेल एज एफएमसीजी एडेड 1%. Realty rose 1.5% and services gained 0.8%. In contrast, metal declined nearly 1%. Commodities as well as insurance shed 0.5% and top 10 banks fell 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, I beg your pardon, as shares of 2,192 companies advanced, 2,127 companies declined and 226 companies remained unchanged.
1: Aur antar banking videshi mudra bazar mein रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 10 पैसे गिरकर 95 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ।

0: actual hedgers to provide a support to their cash market. So I believe this is a great development. I really appreciate this movement by the regulator that now speculation is coming down, and that will be the scenario of the losses in the F&O segment by the retailers, which I observed during the last many years. They were in a speculative spree and getting some losses also, but now trajectory is expected to be balanced with such a development which has taken place.
1: और डॉक्टर शर्मा, अगर हम क्षेत्रों की सेक्टर्स की बात करें तो खासतौर से आईटी या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी हद तक बाजार को संभालने में मदद की, और आप जो अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को लेके क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: देखिए, जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हों या फिर एनर्जी के स्टॉक हों या फिर बैंकिंग के हो या फिर फार्मास्यूटिकल और आयरन एंड स्टील, सभी का योगदान जो है हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो लक्ष्य है जो हम आगे तय करने जा रहे हैं विकसित भारत की तरफ, जो हमें एक अच्छा रूट डेवलपमेंट चाहिए, एक अच्छी स्ट्रांग हमें एक एनर्जी सिनेरियो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे बैंकिंग प्रणाली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. तो इन्हीं के संदर्भ में हमारे ये जो लगभग कोई 10 से 12 सेक्टर्स हैं, ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि जब कोई इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन आती है तो इनके ऊपर भी उसका दबाव आता है, क्योंकि जब सेलिंग होती है दैट creates sometime panic in the minds of the retailers. लेकिन उसमें हमारा रिटेलर भी अभी धीरे धीरे बहुत समझदार होता जा रहा है कि वो उतनी पैनिक अवस्था में नहीं आता. आप देखो कि पीछे पीछे कितने महीनों से, स्टार्टिंग फ्रॉम फेबररी टू नाउ अगस्त, 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत उथल पुथल है, लेकिन मार्केट फिर भी एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है. मार्केट ने वो करेक्शन, जो एक बहुत ही ऐसी करेक्शन होती है जो कि बहुत डीप जाती है और कई बार प्रभावित करती है, वो ऐसी करेक्शन हमने नहीं देखी. मार्केट हमेशा स्टेबल रहती है. अगर 2 दिन मार्केट डिसेलरेट करती है तो उसके बाद 2 दिन आगे बढ़ भी जाती है, उतनी बढ़त वापस हासिल कर लेती है.
2: डॉक्टर शर्मा, वी सीन दैट निफ्टी बैंक हैज बीन क्वाइट बुलिश, बट टुडे देयर वाज अ करेक्शन ऑफ 250 पॉइंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, व्हिच इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक sector banks. Is this just profit booking today, or is there any development?
0: No, I see this is a profit booking only. There is no such development that is providing correction opportunities. But this always happens when the investor shifts from some stocks to the other stock. When they book profit in the profitable ventures or the sectors, then they enter in the other sector. That is the churning aspect of the market. So I would say this is the positive development that they are making profits and shifting to the other sectors also.
2: Well, that was our discussion on the stock market. Let's move on to some more news. Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. More from our correspondent.
3: The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. The centre, through the bill, also seeks to take under its control the regulation of mineral-bearing lands having mineral contents in accordance with the parameters prescribed under the Mines and Minerals Development and Regulation MMDR Act. The government has ensured transparency and conducted auctions to manage this mining resources properly. The minerals are national assets essential for the country's development, and the government has worked with dedication in the national interest. In 2014-15, state governments received 65% of mineral revenues, while the share has now increased to 85%. Anupam Mishra for Market Mantra.
2: Well, Dr. Sharma, this law, which is giving effect to how the mining sector actually develops in the country and how the auctioning process takes place to develop those parts of the country where extraction is possible in a healthy manner. It also has a low carbon footprint. What do you have to say about the

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है आशा भोसले ने।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुई आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.

आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सत्य पे सत्ता, आवाज है आशा भोसले और दिलराज कौर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कुछ लम्हे आगे नहीं बढ़ते, वे बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं। ना कोई आवाज देते हैं, ना ही खुद को जताते हैं, पर जब भी याद आते हैं दिल को हल्का सा छू जाते हैं। ये वही बातें हैं जो कहीं नहीं गईं, पर महसूस पूरी हुईं, और शायद इसलिए वो ठहराव भी कुछ समय के बाद अपना सा लगने लगता है। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में जो अगला गीत आप सुनेंगे, आवाज है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लीडर, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। कुछ पंक्तियां हम लिखते तो हैं पर पूरा नहीं करते। जैसे दिल में एक खत शुरू होता है पर आखिरी शब्द कभी कागज पर उतर नहीं पाता। कागज खाली नहीं होता, वो बस इंतजार करता है उन जज्बातों का जो कभी पूरी तरह कहे नहीं गए। कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है, कभी किसी नाम पर कलम रुक जाती है और वही ठहराव सबसे ज्यादा कुछ कह जाता है। जो पूरा लिखा जाता है शायद उतना खास नहीं होता जितना वो अधूरा रहकर भी सब कुछ कह जाता है, क्योंकि हर कहानी अंत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। कुछ एहसास बीच में रुककर ही एक खूबसूरत याद बनकर हमारे दिल में रह जाते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा और अगला गीत फिल्म शर्मिली से, आवाज है लता मंगेशकर की।

कुछ बातें मन की ऐसी होती हैं जो शब्दों तक आते आते, या यूं कहें कि शब्दों में ढलते ढलते रुक जाती हैं, होठों के किनारों तक आकर वापस लौट जाती हैं, जैसे उन्हें भी डर हो कहीं सुन ली गई तो टूट न जाए। हम अक्सर चुप रहते हैं क्योंकि कहना आसान नहीं होता, और जो महसूस होता है वो हर बार समझाया नहीं जा सकता। कई बार एक ठीक हूं के पीछे पूरा समंदर छिपा होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। वो जो दिल में रह जाता है वो अधूरा नहीं होता, वो बस थोड़ा निजी होता है, और शायद इसलिए हर बात कह देना जरूरी नहीं। कुछ एहसास चुप रहकर ही अपनी पूरी गहराई में जीते हैं। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म संगम से।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है सावन को आने दो, आवाज है यसुदास की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव न्यांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया

0: के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंग होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाउश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर स्नेहा नामक ई बुक भी जारी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज पहला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है हरे कांच की चूड़ियां।

एक नयन में जलती है, एक नयन में जलती है धीमी सी अदृश्य अग्नि, न शब्दों की लपट, न ध्वनि का कोई कंपन, बस भीतर भीतर सुलगती हुई अनुभूति, माथे की वह बिंदी जैसे किसी प्रार्थना का अंतिम बिंदु, जहां जाकर थम जाती हैं सब इच्छाएं और शुरू होता है एक मौन विश्वास। यह आंख आकाश नहीं, पर उसमें तारे ठहरे हैं, सागर नहीं पर लहरों सी कपकपी है, कविता नहीं पर हर पलक पर एक शेर लिखा है, काजल की रेखा न सीमा है न सजावट, वह तो बस एक बहाना है उस गहराई को छिपाने का जिसे कोई माप नहीं सकता।

पलकों के झुकने में एक विनम्र संकोच है और उठने में एक अडिग स्वीकृति कि जो भी है वो सत्य है और वही सुंदर है। इस नयन में ना कोई पुकार है ना कोई शिकायत, फिर भी एक अनुगुंज है जो हृदय के सूने गलियारों में देर तक ठहरती है। यह मौन शब्दों से अधिक मुखर है, यह स्थिरता आंधियों से अधिक प्रबल, यह स्थिरता आंधियों से अधिक प्रबल। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

एक ही नजर में समाया है, एक ही नजर में समाया है अनगिनत ऋतुओं का आवागमन। कभी वसंत की मृदुलता, कभी पतझड़ की खामोशी।

ये आंख किसी की प्रतीक्षा में नहीं, फिर भी हर क्षण प्रतीक्षारत सी लगती है। मानो कोई नाम इसके भीतर जन्म लेना जानता हो। और अंततः जब सब कुछ थम सा जाता है, समय भी विचार भी, तब यही नयन धीरे से कहता है कि सौंदर्य कहां नहीं जाता, बस देखा और महसूस किया जाता है। अगला गीत जो आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अप्रैल फूल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है लैला मजनू। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो धूप में भी ठंडी शाम सा लगे तुम हो। मेरी नजर ने हर एक चेहरा टटोला खामोशी से, मेरी नजर ने हर एक चेहरा टटोला खामोशी से, किसी के लफ्ज में एक मीठा पैगाम सा लगे तुम हो, किसी के लफ्ज में एक मीठा पैगाम सा लगे तुम हो। मैं जब भी खुद से भागी किसी मोड़ की तरफ, मैं जब भी खुद से भागी किसी मोड़ की तरफ, वहीं ठहर कर जो, वहीं ठहर कर मिला जो मुकाम सा लगे तुम हो, कभी जो आहटों में कोई नाम सा लगे तुम हो, कभी जो धूप में भी ठंडी शाम सा लगे तुम हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और सी रामाचंद्रा की, फिल्म का नाम है आजाद। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। कितनी सुंदर बात किसी ने कही थी कि प्रेम भी तुम दोस्त भी तुम, प्रेम भी तुम दोस्त भी तुम, एक भी तुम और अनेक भी तुम, गुस्सा भी तुम माफी भी तुम, जिंदगी के सफर में काफी हो तुम। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है ना, जब जिंदगी की परिभाषा कुछ ऐसी लिखी जाती है। मन का मौसम बड़ा सुंदर सा हो जाता है जब लिखने वाले जिंदगी में चाहे जैसे भी अनुभव हो पर परिभाषा जिंदगी की खूबसूरत लिखते रहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको हम ये भी याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप एफएम गोल्ड पर सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है शर्मिली, आवाज है किशोर कुमार की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियासोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर

0: प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवम्बर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है क्रांति, आवाज है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, वो मुड़ती है, रुकती है और फिर चुपचाप नई दिशा पकड़ लेती है। हम हर मोड़ पर जवाब ढूंढते रह जाते हैं, जबकि रास्ते सिर्फ चलने से बनते हैं। कभी ठहर कर देखो तो समझ आएगा, हर उलझन हमें रोकने नहीं, बस थोड़ा बदलने आई थी। जो बहता है वही सहज पाता है खुद को, जो अटक जाता है वो खुद में ही उलझ जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात एक ही बार में समझ आ जाए। कुछ सफर बस महसूस करने के लिए होते हैं। जब हम हर सवाल का जवाब छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर जिंदगी अपने असली रूप में समझ आने लगती है। अगला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, फिल्म बॉर्डर से।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है उपकार और आवाज है महेंद्र कपूर साहब की। तो आइए सुनते हैं ये गीत आप सभी के साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सिंदूर और आवाज है मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दू, हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दू, होठ थे खुले के हर बहार को पुकार दू, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दू, दर्द था दिया गया कि

हर दुखी को प्यार दूं और सांस यूं की स्वर्ण भूमि पर उतार दूं और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, हाथ थे मिले की जुल्फ चांद की सवार दूं। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है चश्मे बद्दूर, आवाज है यसुदास और हेमंती शुक्ला की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बियोसोलोव न्यांते के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुशिन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार निदेशालय की कार्रवाई में 30 किलोग्राम अवैध ड्रग बरामद की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
2: Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day today. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashvani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashvani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Union Textiles Minister Giriraj Singh will inaugurate Handloom Heart, the Handloom Experience Center in New Delhi today, marking a significant step towards creating a distinctive public destination for experiencing, understanding and engaging with India's rich handloom heritage. Textiles Ministry said that the Handloom Experience Center has been envisioned as a showcase of India's handloom ecosystem, where traditional knowledge is not only preserved and interpreted, but actively practiced, experienced and taken forward. Squadron leader Bhavna Kant has scripted history by becoming the first woman officer of the Indian Air Force to qualify as a fighter combat leader at the Tactics and Air Combat Development Establishment, Gwalior. In a social media post, the Indian Air Force said it is a landmark achievement reflecting professional excellence, combat acumen and the IAF's commitment to nurturing leaders in the air. Services of the Delhi Metro will commence from all terminal stations across its network at 4 a.m. on Independence Day. The Delhi Metro Rail Corporation said that the decision has been taken to facilitate the movement of special guests, invitees and the general public attending the Independence Day celebration. India emerged as the overall champions at the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. Indian contingent secured 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals at the event across the under-23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy, awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red warning predicting very heavy to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh till today. Heavy to very heavy rainfall is also expected over Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand for the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, कभी कभी किसी का हमारी जिंदगी में आना सिर्फ किसी इंसान का आना नहीं होता, बल्कि अपने साथ खुशियों का आना होता है, उम्मीदों का आना होता है, जिंदगी में फिर से रंग भर जाना होता है। वो शख्स आता है तो लगता है जैसे सूने आंगन में बहार आ गई हो, जैसे अंधेरी राहों में रोशनी उतर आई हो, जैसे दिल को फिर से मुस्कुराने की वजह मिल गई हो। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

दोस्तों जानते हैं, वादे करने तो करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वक्त बदलने पर भी उसे निभाना सच्ची मोहब्बत होती है।

0: जब किसी की छोटी छोटी बातें भी अच्छी लगने लगे, उसकी मुस्कान का इंतजार होने लगे और उसकी मौजूदगी में वक्त जैसे ठहर जाए, तो समझ लीजिए दिल ने अपना रास्ता चुन लिया है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:31 और 56 सेकेंड। कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

कभी कभी प्यार भी कितना मासूम होता है ना, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना और नजरों ही नजरों में दिल की बात कह देना। एक तरफ कोई चुपचाप अपने दिल की बात छुपाए बैठा है और दूसरी तरफ कोई उसी दिल की आवाज समझने के लिए इंतजार में है।

दोस्तों, कभी कभी किसी अपने की आवाज में ऐसा अपनापन होता है कि दूरियां भी छोटी लगने लगती है। वो पुकारे तो लगता है जैसे कोई अपना हमें याद कर रहा है। वो आवाज सुनाई दे तो दिल कहता है बस अब और इंतजार नहीं। मोहब्बत में साथ होना ही जरूरी नहीं, कभी कभी किसी की एक आवाज भी बहुत होती है ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। और जब दिल को किसी की पुकार का इंतजार हो तो हर खामोशी में उसी आवाज की आहट सुनाई देती है। चलिए सुनते हैं एक ऐसे ही एहसास भरा गीत।

दोस्तों जानते हैं, जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, बल्कि बस कोई ऐसा हो जो हमारे अच्छे दिनों में ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी हमारा साथ दे, जिसके साथ खामोशी भी अच्छी लगे, जिसके साथ छोटी छोटी खुशी भी बड़ी लगने लगे और जिसके होने से दिल का ये भरोसा रहे कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो लेकिन ये शख्स हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

तो दोस्तों अपने अपनों का हाथ थामे रखिए, प्यार को संभाल कर रखिए और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते रहिए। और मुझे यानी मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार, 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिन्दी में प्रसारित होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बे सोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 15 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार पुलिस और सुरक्षा बलों का एक संयुक्त काफिला डुबंदो चेकपोस्ट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपर दीर जिले के बारीकोट गांव के पास आतंकवादियों ने काफिले पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइन पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है प्रातः के 4:11:07। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें अपने दिल को रोकना पड़ता है, हर उस चीज के पीछे भागने से जो हमारी नहीं है, हर उस इंसान के लिए खुद को परेशान करने से जो हमारी कद्र नहीं करता। दिल को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, हर चाहत पूरी हो जाए ये जरूरी नहीं, कुछ चाहतों को छोड़ देना ही सुकून की शुरुआत होती है।

यादों का मतलब हमेशा उदासी नहीं होता। कुछ यादें हमें ये भी सिखाती है कि हमने जिंदगी में कितना खूबसूरत वक्त जिया है। इसलिए अगर आज किसी की याद आपको थोड़ी उदास कर रही है ना, तो मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ रिश्ते हमारे साथ रहकर भी हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना जाते हैं। और शायद इसी खूबसूरत एहसास का नाम है याद, जो दूर होकर भी दिल के बहुत पास रहती है।

कभी कभी आंखें वो कह जाती है जो होंठ कह नहीं पाते। एक नजर में अपनापन होता है, एक नजर में विश्वास, और कभी कभी उसी नजर में पूरी कहानी छुपी होती है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ किसी की नजरों का इंतजार करते रहना ही काफी नहीं, हमें अपनी आंखों में भी अपने सपने सजाने चाहिए। लोगों की नजरें बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नजर अपने लक्ष्य पर टिकी है ना, तो रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल जरूर मिलेगी।

दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। किसी का सपना अपने परिवार को खुश देखना है, किसी का अपनी पहचान बनाना और किसी का बस इतना कि जिंदगी में सुकून और सम्मान के साथ जी सके। लेकिन सपनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्हें पूरा करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज का एक छोटा सा कदम ही आपकी जिंदगी में नयापन ला सकता है। रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी, लोग सवाल भी करेंगे, कभी खुद पर आपको शक भी होगा, लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपने सपने पर विश्वास करना नहीं छोड़ता ना, उसके लिए देरी हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर मंजिल असंभव नहीं होती। इसलिए अपनी आंखों में सपने सजाइए, दिल में उम्मीद बचाए रखिए और कदम आगे बढ़ाते रहिए।

दोस्तों कहते हैं ना कि घर से दूर जाने वाला इंसान सिर्फ अपना शहर नहीं छोड़ता, वो अपने पीछे बहुत सारी यादें भी छोड़ जाता है। परदेश में चाहे कितनी भी रोशनी हो, दिल को अपने घर के आंगन की वही छोटी सी रोशनी याद आती है। माँ की आवाज, पिता की डांट, भाई बहन की शरारतें और दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र पल, सब कुछ याद आता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दूरी चाहे हजारों किलोमीटर की हो जाए, अपनों से जुड़ा दिल कभी दूर नहीं होता। जो लोग आज अपने परिवार से दूर है ना, किसी दूसरे शहर या देश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बस इतना कहना है कि हौसला रखिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन वही दूरियां आपको फिर अपने घर की चौखट तक ले आएंगी।

दोस्तों, दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चे रिश्ते कभी दूर नहीं होते। कुछ लोग हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारी हर धड़कन में मौजूद रहते हैं। तो जहां भी है, खुश रहिए, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहिए और अपनों से जुड़े रहिए। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी में प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और असहनीय पीड़ा झेलने वालों के सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे पहले कल विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नयांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 15 आतंकवादी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार सुरक्षा बलों का एक संयुक्त काफिला डुबंदो चेकपोस्ट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपर दीर जिले के बारीकोट गांव के पास आतंकवादियों ने काफिले पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके को घेर लिया गया है और बाकी आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक

सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 6 सेकंड। हमराही भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों सुबह हो चुकी है, रात पीछे छूट गई है और एक नया दिन हमारे सामने है। हर नई सुबह हमें मौका देती है बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किल, लेकिन जरूरी ये है कि हम मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना ना भूले, क्योंकि खुश रहने के लिए जिंदगी का बिल्कुल सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें जो मिला है ना, उसी में खुशी तलाशना सीखना पड़ता है। तो आज सुबह अपने दिल से सारी उदासी निकाल दीजिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और अपने इस नए दिन का स्वागत पूरे उत्साह के साथ कीजिए। और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

दोस्तों, सुबह का ये नया दिन हमें एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाता है। जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं, उसे जीना भी है। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर उन खुशियों को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद होती है। कभी अपनों की मुस्कान में खुशी ढूंढिए, कभी सुबह की ठंडी हवा में महसूस कीजिए, कभी किसी पुराने गीत के साथ मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और इसका हर पल दोबारा लौटकर नहीं आता है। मुश्किलें आएंगी, रास्ते बदलेंगे, कभी मन उदास भी होगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि दिल में उम्मीद की रोशनी बनी रहे।